0: ये बोलो बिस्मी, ये बोलो बिस्मी, जो है जो खसी ऑनलाइन तुम मन लो
1: बुक्के ना अंदर कुछ सेठ भी नहीं चुप नहीं अंदर ना कुछ बुन जाए वच को चाल लो तो एम सी पुल लास्ट इन फाइल की नो मिटिंग लास्ट के दो मिटिंग बुक के लो फॉल फॉल लिम नहीं चुप नहीं अंदर ना लोग लोग ने चुप डर चंगल मुंह में सुन चुप आदम चंगल मुंबा निप लोग लोग डर चंगल नेलिंग सिक डब नेकलिंग चिंग चुप नेलिंग सिकराता मुस्ताकिम
0: ये बोलो बिस्मी, ये बोलो बिस्मी, जो है जो खसी ऑनलाइन तुम्हारा मंडो